दुखम पातिक बिना सह गुर अमरदास परसी है सिद्ध साधक आशा सह गुर अमरदास परसी है ध्यान लइए पौ मुकह गुर अमरदास परसी है अपौ लभै गौ चुकै एक बिन दुगण जो तो रहै जा सुमंत्र मानवैल है जाल पाप दार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठ मिले कन हर बूंद बसोरु मावल कुसुम बसंत गणंत नयावे रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर कै कब जन पल उन्हें सो गावै

सुन लवो भया मनूर, जेड़ा निकम्मा लोहा सड़ चुका है कंचन फिर होवे वो सोना बन सकता है, पर शर्त एक के जे गुरु मिले तनेहा, जे पूरा गुरु मिल पवे वो सड़े हुए लोहे नू ही सोना बना देंदा है, पर किवें बनांदा है, एक नाम अमृत वो देवे तो नानक त्रिष्ट सदेहा, जे नाम अमृत देवे तो सड़े हुए मना नू भी कीमती सोने वर्गे बना देंदा है। बाबा अमरदास कह लगा बचिए गल तां तेरी ठीक है कि सड़े हुए लोहे भी सोना बन सकते ने, पर गल तां उत्थे फिर अटक गई ना, पूरा गुरु मिले कित्थों, किवें मैनू कोई सोने सोना बना देवे। साध संगत देखो गुरु के शब्द विच इन्नी ताकत जे, बाणी विच इक प्रमाण हुंदा गुरु अर्जन साहब जी दा, किन्ने जेड़ा बंदा दुनिया तो तंग हो जाए ना, जिन्हों संसार दे लोक बिल्कुल पसंद ना करन, कई बारी बंदा परिवार तो भी दुखी हुंदा ते फिर एक आस नाल जींदा, चलो परिवार नहीं निरंकार ते है ना, रब ते है ना, ते गुरु पंचम पिता कहिंदे ने जिहड़ा संसार तो दुखी होया है ते निरंकार वल तुर पिया है, ते जे निरंकार भी कह के तेरे वर्गे निकम्मे नूं मेरे घर भी थां नहीं, हो जाए किथे, जिन्हों संसार नहीं रखदा वह निरंकार वल जांदा है, ते जिन्हों निरंकार कह दे तेनू मेरे घर भी थां नहीं, वह किथे जाए। ते सतगुरु बाणी विच कह लगे सजना ध्यान दई, जे संसार नहीं रखदा निरंकार नहीं रखदा ते पूरे गुरु के शब्द नाल जुड़ जा, गुरु के शब्द विच इन्नी ताकत ही संसार ते निरंकार दे धक्या होया नूं भी गुरु पवित्र करके रब की दरगाह विच प्रवान कर दिंदा। बाणी विच बचन आया हजूर कहिंदे ने आपे कुदरत साज कह आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे आपे परखण हार, खरे खजाने पाइए खोटे सतियां बार बार, खोटे सच्ची दरगाह सुटिए खोटियां नूं सच्ची दरगाह विचों भी बार सर दिता, किस आगै करे पुकार किदे कुल जाके खोटा रोवे। ते साहब कहिंदे ने सतगुर पिछे भज पवे ए आ करनी सार, क्योंकि सतगुरु खोट्यो खरे करे शब्द सवार बहार। गुरु कोल ए ताकत खोटे नूं भी खरा बना दिंदा है। कहन लगे बचिए मन मेरा मनूर ही, गुरु नानक दे चरणा विच मैनू लै जा, जिदी बाणी सुन के टिका मिलिया ते जिदा मैं ओदा हो जावांगा उदन पता नहीं किन्ना कु आनंद मिलेगा। ते बीबी अमरो ने एक शब्द कहा, कह लगी पिता जी गुरु नानक साहब ता हो गए ने अंतर ध्यान, उन्हां दी जोत हुण मेरे पिता गुरु अंगद साहब दे अंदर विराजमान ने, मेरे पिता जी ने खडूर। ते कहन लगे धीए जिथे गुरु नानक दी जोत है तू मैनू उथे लै जा, मैं हो सकदा तेरे पिता दे चरण परसा ते मेरे अंदर नू टिकाओ मिल जाए। उस वक्त बीबी अमरो ने कहा पिता जी गुरु पिता दा हुक्म है, साडी आग्या तो बिना घर नहीं आउणा, जे मैं चली गई ते गुरु पिता की कहणगे। ते बाबे अमरदास ने कहा कहन लगे धीए जिस गुरु की बाणी दे विच इन्ना बैराग इन्नी कृपा है, जदों मेरे वर्गे सड़े हुए मनूर नूं गुरु पारस दे कोल लैके जाएगी ना ते मैं तरला लैके कह देंगे दाता ए अमरो तेरे करके नहीं असल विच मेरे वर्गे सड़े हुए मनूर वास्ते आई, तू चल तां सही। अज एक बीबी जिहड़ी बाणी विच रंगी है, चेते रखियो जे किते बीबियां बाणी नाल जुड़ जाण ना ते पूरे दा पूरा घर तब्दील हो सकदा है। ध्यान दिया जे गुरमत विच बड़ी वड्डी थां है, बेबे नानकी बाणी नाल जुड़ी है, ते गुरु नानक कहिंदा रबाब मैं बेबे दे रुपइयां दी लैणी है। कमाल दी गल बीबी अमरो बाणी नाल जुड़ी है ते बाबा अमरदास जिहड़ा नगूरा है अज उस बीबी दी पढ़ी हुई बाणी उस बीबी दा कमाया होया जीवन उस बाबे बजुर्ग नूं गुरु दे घर विच लैके जा रहे। एक नहीं बेअंत उदाहरणां ने, माता खीवी बीबी है जिन्हों सत्ता बलवंत कहिंदा मां जदों तेरे लंगर विच आ के बहिंदे आ ते अंज लगदा है जिवें धुप विच सड़े हुए बंदे नूं संघने पत्तियां वाला रुख ओदी छां मिल गई होवे। ध्यान रखना बीबी भानी है बाणी नाल जुड़ी है जिहड़ी पिता दी सेवा करके कहिंदी है जान ना देसां सोडियां होरस आजार ना जरिया जावे। बीबी कदी तको वीरो वल किन्नी कु गुरमत ने रंगी है जे घर पुत्र पैदा

प्यारे जेड़े कर्म आपां करने हैं ये भुगतने पैने ने, पर देखो सब तो वड्डा माड़ा कर्म पता है की है, गुरु जी ने अज कह कह लगे कत्तक कर्म कमावने दोष ना काहू जोग, सब तो वड्डा माड़ा कर्म ही परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। अगला बचने वेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग, ते जे भुल गयो खिनमें कौड़े होए गए जितड़े माया भोग, जेड़े भोग भोगना पे ए कौड़े हो जाणगे, पर जे तू रब तो वेमुख ना होवे गुरु दे सन्मुख रहे तेरी झोली विच दात पैगी। गुरमुखो आओ देखो सत्कार योग भाई साहब उन्हां ने तुसा एक उपराला कीता है बच्चियां नू गुरमत देण दा, बड़ी चंगी बात है। मैं आरंभ विच अर्ज कीती पनीरी खै जिस माली ने पनीरी सांभ ली बगीचे ओदी सुगंधी देणगे, रब मेहर करे। कबीर जी ने एक बहुत कमाल दा बचन किया, कदी मत समझिए कि बच्चे नू सिर्फ उम्र करके अंदर जेड़ा आत्मा पता नहीं किन्ने कु दिनां दा सफर करदा पिया है। साडे सामने उम्र ओदी 7 साल 8 साल 10 साल है, पर अंदर वाला आत्मा तां कई जन्मां दा चलिया है। बच्चा जे किते मां बाप आप किसे संचे विच ढले होण ते बच्चा जरूर ढलेगा। मैं सिर्फ दो तीन उदाहरणां देणियां चाहना। कबीर जी ने एक बचन कहा है कि जिस तरह बच्चा निर्मलताई बचपन विच लैके तुरदा है, रब मेहर करे बच्चा एक उस रुख की तरह है जिहड़ा धरती विचों निकलदा है, इन्ना कोमल ते लचकीला है जिधर ओनू करांगे आपां रुख ने उसे पासे ढल जाना है झुक जाना है, जिधर बच्चे नू तोरोगे उन्हें उसे पासे तुर पैना है। कबीर जी ने एक बचन कहा कबीर जैसी उपजी पेड़ ते, वैसे दे भाव अर्थ कुछ होर ने, पेड़ ते दा अर्थ टीकाकारा ने यही कीते ने कि जिवें मानो के रुख कोमल है धरती चो निकलदा जे अखीरले समय तक कोमल रहे ते एदे वर्गा कोई नहीं, पर पेड़ ते दा अखरी अर्थ करांगे मूल के जदों माता दे उदर विच बच्चे दा जे जन्म नहीं होया जेड़ी लिव उथे लगी सी, जे किते ए लिव जन्म तो लैके मौत तक लगी रहे बंदे दी कीमत करोड़ा रतना नाल भी नहीं पाई जा सकती। जैसी उपजी पेड़ ते जिस तरह तू पैदा होए जो तैसी निभ है औड़, हीरा किसका बापड़ा पुजै ना रतन करोड़। पर देखो बच्चे अंदर एक दृढ़ता है, तीन चार उदाहरणा ने सिर्फ। प्रहलाद एक बच्चा है, उस बच्चे दे अंदर रब ने मेहर कीती, कोई बाप दे सामने नहीं सी बोलदा पर प्रहलाद अपने बाप दे सामने खलो के बोलिया, उस बच्चे दी दृढ़ता कैसी सी, उसका अंदर किन्ना टिकिया सी, परमात्मा भी ओदे भोलेपन उते खुश हो गया, ओदे भरोसे ते मेहर कीती। ध्रुव दी उम्र कितनी सी, ध्रुव बिल्कुल रब लई नहीं तुरिया, जदों बच्चे गुरमत लई तुरदे ने देखो अज इनाम मिलेगा, इन्हां लई बड़ी वड्डी चीज है। ध्रुव जिदन तुरिया उन्हें यह नहीं सी पुछया मां मैनू रब किवें मिलेगा, किते नहीं लिखिया रब लई तुरिया, बिल्कुल झूठ है। उन्हें इको गल कही मां माई जिस तखत तो अज मैनू धक्का पिया मेरे प्यो दा तखत किवें मैनू मिलेगा, उन्हें राज मंगिया उन्हें रब नहीं मंगिया। ते भाई गुरुदास ने कहा ध्रुव हसदा कराया कर प्यार प्यो कुछड़ दिता, बाहों पकड़ उठा लिया मन विच रोस मतरई किता, डड्डो लिका मां पुछे तू सा वाणी खै के सरीता। ओदे विच उन्हें एक सवाल किया मां कि सुदम ते राज मिले, उन्हें नहीं कहा रब मिले, किस उदम ते राज मिले शत्रु ते सब होमन मीता। मां बड़ी सियाणी से उन्हें कहा पुत्र मेरिया राजे दे घर जम्मी आ राजे नाल व्याई आ, धक्के तां पए ने मेरी भगती कोई नहीं, मेरी भगती हुंदी ते इहदी कुख चो तेनू मे राजे दी गोदी चो तेनू खिचदा क्यों कोई, मेरी भगती नहीं। देखो इत्थे इहने कहा कि तेरी भगती नहीं, मां ने तोरना सी पुत्र तू पुछना किस उदम ते राज मिले छत्री ते सब खोण मीता। मां ने को गल के पुत्र परमेश्वर आराधी है जिदू होई है पत पुनीता, दो बच्चे तुरे मुदता हो गई ने गुरु ग्रंथ साहिब विचो आवाज आउंदी जे रब नू पाणा है ते राम जपो जी, ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हरा जैसे एक दृढ़ता है। तीसरी उदाहरण बाबे फरीद दी असी गल करने हैं। मैं पढ़ रहा सां 10 साल तो थोड़ी उम्र सी,

तो शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख तोवे सुकहु टल गुर सेविए एहन सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए।

बंदा अगर ए दोष गलतियां करेगा उन्हें ए सजा दिती जाएगी, पर जे राजा भी करेगा तो राजे नूं ए सजा दिती जाएगी। उन्हें बकायदा एक मर्यादा बना दी भी ए गलती ए भुल करे तो राजे नूं की सजा है तो प्रजा नूं की सजा है। तो गजब की गल यह है, इस वास्ते देशवासियों के मन विच राम का बहुता प्यार होया कि राम ने आम बंदियां दे कीतियां होईयां गलतियां की जिहड़ी सजा नियुक्त की सी ना उही सजा राजे वास्ते। रंचक मात्र भी फर्क नहीं रखिया भई एक भुल अगर एक प्रजा दे चों कोई करदा है तो जिहड़ी सजा उसनों दिती जाएगी उही सजा उसनों दिती जाएगी अगर राजा करे, अगर हुक्मरान करे, अगर सिंघासन ते बैठा होया करे। इस वास्ते रामराज परिषद रामराज की भावना साडे देश दे च उजागर होईयां ते कईयां दे मन दे तड़प पैदा होई भी किसे तरीके नाल राम दा राज होवे। तो घटना की है, राम ने एक मर्यादा बना दिती सी, कोई स्त्री लगातार 3 महीने घर तो बाहर रही है ते 3 महीनियां बाद अगर वो घर दे च आउंदी है ते पति दी मर्जी है उसनों रखना है या नहीं रखना, उन्हें मर्यादा बनाई श्री राम ने। श्री राम ने यह मर्यादा भी बनाई कि राजे की आखी हुई गल अगर बहुपक्षी काबले कबूल ना हुई तो राजे की उस गल नूं रद्द किया जा सकता है। तो बहुगिणती दे च अगर प्रजा कोई गल आखे तो राजे नूं वह गल कबूल भी करनी पएगी, प्रवान भी करनी पएगी, मनना भी पएगा। उसने मर्यादा बना दी। सीता जब घर आई आप अयोध्या के राजा बने सिंघासन से बैठे तो प्रजा की बहुती आवाज यह उठ पई भी सीता राम के इस महल में नहीं रहनी चाहिए। 3 महीने रावण को रही है आवाज उठी और यह बहुपक्षी उठी, एक धोबी तो उठी बहुपक्षी आवाज उठी तो राम ने आप जो है मर्यादा बनाई सी। बहुसमति दे अगर प्रजा कुछ आखेगी तो राजे नूं भी झुकना पएगा, गल मन ली काबले कबूल कर ली। जे प्रजा इस ढंग नाल चाहती है तो भावे मैं ना चाहता होया भी प्रजा की गल का सन्मान करदा, मैनू प्रवान है। सीता नूं घरों कढ दिता प्रजा दे कहण ते, जे प्रजा नहीं चाहती तो ठीक है, जे संसार नहीं चाहता तो ठीक है, जे बहुगिणती नहीं चाहती तो मैनू इस प्रजा की गल नूं जो है प्रवान कर लगे हां, कोई दुख नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उस वक्त हुक्म दे दिता भी सीता प्रजा नहीं चाहती तो मैं आप ही मर्यादा बनाई है तो मर्यादा दे उत्ते मैं अपनी जान दे सकता। इस वास्ते राम दे नाल एक दोहरा बड़ा मशहूर हो गया क्योंकि रघुकुल दे पैदा होए सन। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जो कुछ कह दिता है वह निभाना है, भावे प्राण ही जान भावे जिंद जाती है तो जावे। तो मर्यादा ते आप बनाई सी। तो होया कि जब बहुपक्षी बहु समति ने आवाज उठाई आपने सीता नूं घरों कढ दिता। इस ढंग नाल प्रजा की खुशी ले ली, सिंघासन ते बने रहे। प्रजा ने कहा सानू काबले कबूल है, यह राजा जड़ा है काबले कबूल है, पर साडा देश राम राज तो चल के कित्थे पहुंच गया कि एक अदालत वकत दी एक अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट वकत दे हुक्मरान नूं दोषी साबित कर देंदा है, वह कानून ही बदल के रख देंदा है, वह विधान ही बदल के रख देंदा है, वह विधान दी तरमीम ही करके रख देंदा है। ऐ साडे देश दा ढांचा राम राज तो चल के इत्थे जा पहुंचे और ये नक्शे मैं थोड़े सामने रखदा पिया जो कुछ है किथे राम राज मर्यादा जो बनाई और राम जब सीता नूं घरों कढ़दे ने कहिंदे ने लगातार रोंदे ही रहे कई दिन तक भी सीता ते जुल्म होया मेरे ते भी जुल्म होया पर मैं करा कि मैं मर्यादा बनाई है, प्रजा नहीं मनदी। हुण जब प्रजा नहीं मनदी ते इहदा मतलब थोड़ी कोई मैं राजा ते विधान बदल देना। अगर चाहते तो राम विधान बदल सकते सन, राजे सन, ताकत दे सन, सैना उन्हां दे कोल, सिंघासन उन्हां दे कोल, सब कुछ उन्हां दे कोल सी, एक लकीर नाल विधान बदल सकते सन, नहीं बदलिया। आख्या कोई गल नहीं,

कर दिया, थक गया, पर अजय मैं मंजिले मकसूद पे नहीं पहुंचे। तो चढ़ना एक पौड़ी है। धर्म जमीनी मार्ग नहीं है, पौड़ियां है, और इस पौड़ियां ते सुरत ने चढ़ना है। उस पौड़ी के उ सुरत न सहजे सहजे चढ़ना है। तो चाड़न लग्या उख्याई होंगी है, लाजमी होंगी है। इस वास्ते हर बंदे को जप नहीं हो सकता। जप का मतलब कि सुरत न उच्चा चाड़ना, पानी निमाण की तरफ अपने आप जाता है। उपर चाड़ना हो प्रैशर चाहिए, दबाव चाहिए। सुरत न उपर लै जाना है, बड़ी करड़ी साधना चाहिए, कड़ी जप। इस वास्ते साहब कहते गुरु का मार्ग, संत का मार्ग, धर्म का मार्ग, जमीनी मार्ग नहीं, पौड़ियां ने, तो पहाड़ी रस्ता है। को वड भागी पाए, इस रस्ते में कोई बिरला वड भागी जो है अबूर करता है, प्राप्त करता है, चढ़ चढ़ के। मैं फिर अर्ज करा, आखण औखा साचा नाम जड़ा कह दिता है मेरे पातशाह ने, जप के कभी देखना बहुत औखा है। वाहिगुरु वाहिगुरु मनुख इंज उचारण करे तो इनू कन नाल सुने। लवज मैं फिर दोहरा दें, तो जब तुम सुन बैठोगे तो नहीं सुनोगे। वाहिगुरु वाहिगुरु रचना कर दी रहेगी, सुनोगे नहीं, ध्यान किसी और पासे हो जाएगा। सुनते ता सकोगे जे ध्यान हो। धुन ध्यान की साधना, यह शब्द सुरत की साधना, यह पौड़ियां ने, यह चढ़ना है, यह बिखम है, यह मार्ग औखा है। नाम सिमरन का साहब कहन को वड भागे पाए, को विरला वड भागे, इस मार्ग न अबूर करके मंजिले मकसूद पर पहुंचता है। हां जी, इस पौड़ियों से चढ़ के जो मंजिले मकसूद तक पहुंच जाता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं, करोड़ों जन्मों के संस्कार मिट जाते हैं, करोड़ों जन्मों के दुख मिट जाते हैं। एक जन्म का दुख हो शायद असं एक साल में दूर कर छड़िए। कई जन्मों के अंदर संस्कार ने, कई जन्मों के अंदर पाप ने, इकट्ठे ने, ढेर वधदा ही जा रहा है, वधदा जा रहा है। पर इस पौड़ी से चढ़ के जो मंजिले मकसूद से पहुंच जाता है, साहब कहने वे करोड़ों जन्मों के पाप बन जाते हैं, करोड़ों जन्मों के दुख मिट जाते हैं। हां जी, जिस संसार में जिस परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी पूरी कला वरताई हुई है, भाव अपनी सता रखी हुई है, और अपनी सता के आसरे के सूर्य चंद तारे जमीन आसमान पशु पंखी सागर हवा सब टिका के रखी हुई है, उसकी उस्तत करो। जिसने अपनी कला वरता रखी है, जिसने अपनी सत्या के नाल सारे निजाम नु जो है काबू च किया होया है, उसकी उपमा करो, उसकी महिमा गायन करो। ते तुसी आखोगे महिमा गायन करने उस्तत करनी, तो खुशामद दिल्ली च सज्जन मैनु कहन लगा, बंदे नु भी खुशामद की लोड़ है। आखिर बंदा रब ने बनाया, जब रब खुशामदी है तो बंदा भी खुशामदी है। रब की उपमा करो तो रब बख्शिश करता, ना करो तो नहीं करता। मैं खर भुल गया तू गल नु समझिया ने, तो मैनू कह लगा धार्मिक दुनिया तो यही आख्या जाता ना, रब की उस्तत करो, रब की उपमा करो। तो जे रब न उपमा की लोड़ है तो आखिर बंदे उपमा की लोड़ हो, तो फिर निंदा कही गल दी। बंदे भी उस्तत की लोड़ है, क्योंकि रब न उस्तत की लोड़ है, तो सारे संत जन कहते हैं उसकी उस्तत करो। हूं उस्तत उस्तत अंतरा की है, यह मैं अर्ज कर दें। सूरज भी उस्तत करिए तो साड़ी उस्तत करन नाल इहदे च चमक नहीं है, है ही। तो जे ना करिए तो कोई अंधेरा नहीं हो जाना। परमात्मा नूं वड्डा वड्डा करके आखिए, साड़े वड्डा वड्डा आखण नाल वड्डा नहीं है। तो जे किधरे ना आखिए तो उन्हें छोटा भी नहीं हो जाना। जे सब मिलके आखण पाए वड्डा ना होवे गाट ना जाए। साड़े वड्डा वड्डा आखण नाल वड्डा नहीं है, तो जे ना आखिए तो छोटा भी नहीं हो जाता। दूजी, किसी संगीतकार की उपमा करिए उस्तत करिए तो बंदा संगीतकार नहीं बन जाता। किसी महान दार्शनिक कवि की उपमा करिए तो बंदा कवि नहीं बन जाता। किसी करोड़ों पति अरबों पति धनवान की महिमा गायन करिए तो बंदा कोई धनवान नहीं हो जाता। किसी हुक्मरान की उस्तत करिए तो बंदे को कोई राजपाठ नहीं मिल जाता, कोई बंदा हुक्मरान नहीं हो जाता। पर सच जाणो कोई भगवान की उपमा करे तो भगवान ही हो जाता है।

0: सुख मिलता नहीं, धन इकट्ठा हो गया, संपदा इकट्ठी हो गई है, शान शौकत बन गई है, सदा है सुख तो मिलता नहीं। सुख का ही दूजा नाम परमात्मा, परमात्मा का ना ही सुख है। सूरज का मिलना ही रोशनी का मिलना है, सुख का मिलना ही परमात्मा का मिलना है, परमात्मा का मिलना ही सुख का मिलना है। तो हुण सुख किवें मिले? साहिब गुरु अमरदास जी महाराज जो है दसदे ने पावन पवित्र इस बाणी दे राही आप सरवण करो कि किवें जो है सुख की प्राप्ति की जा सकती। हां जी,
1: गुर सेवा ते सुख पाईया, पुरखा सुख ना पाल।
0: तू सुख की टोल किसे होर पासे ना कर, ए गल वखरी, मित्रां दी टोल जरूर कर और धन संपदा की टोल जरूर कर, इस दे नाल ते बिना तेरी उपजीविका नहीं चलेगी, और सिलसिले जुटा टोल कर। पर तू ये आखे कि हुण मित्रां चो मैनू सुख चाहिदा है, धन तो मैनू सुख चाहिदा है, पुत्रां तो मैनू सुख चाहिदा है, परिवार तो मैनू सुख चाहिदा है। साहिब कहिंदे ने होर ते सुख ना भाल, होर किसे पासे सुख लभण दी कोशिश कर ही ना, तू टोल कर ही ना। जे सुख लभना है ते सुख लभेगा गुरु दी सेवा विच। पर हुण सवाल यह पैदा हुंदा, गुरु दी सेवा की है? बस इस सेवा दा थोड़ा जिहा मैं खुलासा करना है ताकि गल स्पष्ट हो जाए। गुरु की सेवा की है, ये दूजी पंक्ति खोल दी है की सेवा है, किस तरह सेवा करोगे? क्योंकि सेवा करने वाले भी बथेरे मैं दुखी देखे ने। एक कहिंदा मैं कौम की सेवा पिया करना, एक कहिंदा मैं गुरुद्वारे की सेवा पिया करना, एक कहिंदा मैं लंगर की सेवा पिया करना, तो यह भी मैं रोंदे पिटदे देखे ने। गुस्ताखी माफ क्षमा करनी, सेवा की है? तो यह दूजी पंक्ति च गुरु अमरदास जी महाराज ने आप ही खोले है, आप जो है सरवण करो। हां जी,
1: का शब्द मन पी दिया सदा वसै हर नाल।
0: गुरु की मूल सेवा की है कि गुरु शब्द दे अपना मन परोले, गुरु दे शब्द दे अपना मन जोड़ ले। हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का नाम, उदी याद नु हिरदे च वसा ले। जिथे गुरु की सेवा की गल आवे ना, इस सेवा का मतलब है सिमरन, इन्नी मैरज करते हैं। तो जिथे गुरु की सेवा की गल ना आवे, उथे सेवा का मतलब है संसार की सेवा। सेवा संसार की करनी है, सिमरन गुरु का करना है, सिमरन निरंकार का करना है। तो हुण थोड़ा जिहा मैं होर भी खुलासा कर दिया, सेवा की लोड़ दुनिया नू है, गुरु नू नहीं है, परमात्मा नू नहीं है। परमात्मा ते साडी सेवा पिया करदा है, सूरज बन के सानू रोशनी पे देंदा है, परमात्मा ही दे रहा और कौन दे रहा, साड़ी सेवा पे करदा है। धरती बन के सानू रहण दी थां ते उपजीविका पे जुटांदा है। पवन बन के परमात्मा, ये परमात्मा साड़ी सेवा पे करदा है। उन खुले रूप च मैं कहां, सेवा दी लोड़ पैंदी है उसनू जिहड़ा छोटा है, सिमरन उसदा करना है जो वड्डा है, सेवा उसदी करनी है जो छोटा है, इहनू समझना है। जिहड़ा वड्डा उहदी की सेवा करोगे? परमात्मा नूं भोजन छकाओगे उहनूं भुख ही नहीं लगदी, उहदी मुट्ठी चाह पी करोगे उहदा शरीर ही नहीं है, निराकार है, उहनूं वस्त्र पहनाओगे लोड़ ही नहीं है, की सेवा करोगे उहदी? इहनूं समझना है। विच दुनिया सेव कमाईए, सेव दुनिया दी, सेवा दुनिया दी। गुरु रामदास जी ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने महान तीर्थ बनाया दुनिया की सेवा लई। लोकी आन इना दी मन दी मैल धोले, इना दी तन दी मैल धोले, ते सेवा और की है? मां की करदी बच्चे दी मैल धोंदी और की है? जे गुरु भी साडी मैल धो रहा है ते साडी सेवा पे करदा, ते सेवा ते छोटे दी करी दी है, इन्नी मैरज करदा है, छोटे दी करी दी। शब्द रचना और परमात्मा दी दैवी शक्तियां साडी सेवा विच लीन ने, साडी सेवा कर रही ने। सेवा आउंदी है जो अपने तो छोटा है पिछे, हुण मां बाप बच्चे की सेवा ही करते हैं और की है? ना सेवा करन ते बच्चा जिंदा रह सकता है? यकीन जानो, परमात्मा सूरज बन के सानू रोशनी ना देवे असी जिंदा रह सकांगे? परमात्मा पौन बन के सानू प्राण ना देवे ते क्या जिंदा रह सकांगे? ते सब परमात्मा इंज साडी सेवा पिया करदा है जिवें मां बाप मासूम बच्चे की सेवा करदे ने। फिर मां बाप बुढ़े हो जांदे ने, कमजोर हो जाते हैं, बच्चा जवान हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। हुण ताकतवर नूं चाहिए कमजोर की सेवा करे, हुण मां बाप कमजोर हो गए उनकी सेवा करे। सेवा तो कमजोर की होंगी है, सेवा निर्बल की होंगी है, सेवा कमजोर की होंगी है।

ना तू ने बुतों से सीखा जंगो जदल सिखाया वाइस को भी खुदा ने अपनों से बैर रखना तू नो बुतों से सीखा। हुण 33 करोड़ देवते लड़ देना झगड़ देना एक देवता दूजे नाल दूजा तीजे नाल तीजा चौथे नाल खिमा करने एक दूजे का दुराचार भी करते ने देवी देवते चोरियां यारियां दे च भी ने सब कुछ है। ते हुण उन्हां देवतियां दी उपासना करन वाले उन्हां देवतियां नाल जुड़न वाले और देवते भी पत्थर दे ते पूजदियां पूजदियां पत्थर नहीं होणगे दिल दिमाग पत्थर हो जाणगे ते पत्थर नाल कोई टकराएगा ते अपना सिर भन्नेगा ना इन्नी है ना। हिंदुस्तान दा ए सिर हिंदुस्तान दा ए ब्राह्मण इतना करड़ा हो गया पत्थर पत्थर नू पूज पूज के पत्थर हो गया जिहड़े विचारे टकरांदे गए उन्हां नू चिकना चूर करदा गया अज तक ते इस तरह ही होया। और इन्हें समझना कि विपरीति खत्म हो गई पत्थर दिल खत्म हो गए ने पत्थर दिमाग खत्म हो गए ने मौजूद ने यह निजाम बदलना पड़ेगा। यह पत्थर दिलों का इतनी कोमलता चाहिए है बहुत वड्डी कोमलता चाहिए। तो खैर इकबाल कहिंदा सच कह दूं ऐ ब्राह्मण गर तू बुरा ना माने तेरे सनम कंधों के बुत हो गए पुराने अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा अपने नाल वैर। कमाल की गल पंजाब देश का अंग ते सारे प्रांतां नू हर तरीके नाल संपन्न करन दी कोशिश करो पंजाब नू कमजोर करन दी कोशिश करो जे तुसी एनएसए भी लाओ ते बाकी प्रांतां दी सजा एक साल दी पंजाब देश दो साल दी एथे दो साल दी जिस जिस प्रांत च तुसी डैम बनाओ उस प्रांत दे हवाले कर दो पर इत्थे तुसी भाखड़ा बनाओ ते अपना ही कंट्रोल रखो पंजाब नू नहीं देना ये क्यों दिता जाए इन्हों तुसी अंग कदी समझे ही नहीं ते जब तुसी पंजाब नू अपना अंग नहीं समझते ते पंजाब दे च रहण वाला थोड़ा अंग किस तरह होवेगा उसनू तुसी अपना अंग एक हकीकत है बहुत वड्डी सच्चाई है अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा। तेनू पता ही नहीं सिख इस देश का जितना अपना है होर कोई अपना नहीं इत्थे ते पुराने बंदे जय चंज पैदा होंदे रहे जो देश नू गुलाम करदे रहे इत्थे ते खिमा करनी भगत सिंह जैसे सिखां विच पैदा होए जो देश नू आजाद कराते रहे इत्थे ब्राह्मणा दे जय चंद पैदा होंदे रहे जो देश नू गुलाम करते रहे इत्थे इतिहास है सामने इतिहास है साडे विच तुसी एक ते जय चंद पैदा करके दिखाओ इतिहास पढ़ के वेखो पुराना जय चंदा दी डारा दी डारा लगियां पईयां इन्हां विच अथा अनंत ते कमाल दी गल अपनों से बैर रखना। इकबाल कहिंदा भई मैं इस देश दा वासी हां मैं इस देश विच रहिंदा इस देश दे जमिया पलिया मेरे पिता पितामा इस देश दे पर अपनों से बैर रखना तू नो बुतों से सीखा जंगो जदल सिखाया वाइस को भी खुदा ने तंग आके मैंने आखिर हुण ए शहर गुरु रामदास जी दा वसाया होया ना ते कदम कदम दे हर चौक दे कुछ ऐसे आकार बनाए जान पत्थरां दे जिथों गुरु रामदास की झलक हर पासे मिले शहर गुरु रामदास दा ते तुसी सारे शहर घूम फिलो खिमा करने इस तरीके के अंकार बनाए गए ने जिदे नाल गुरु रामदास जी नू भुल जान ए लोकी भुल जान। अपनों से बैर रखना तू नो बुतों से सीखा अदो गई इन्ना मुतसबपना इन्नी तंग दिली जो मैं इस शहर घूम फिर के देखदा अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा जंगो जदल सिखाया वाइस को भी खुदा ने तंग आके मैंने आखिर देरो हरम को छोड़ा वाइस का वाज छोड़ा छोड़े तेरे फसाने। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने अपनी जान दे देते तिलक ते जनेऊ दी खातर ते तिलक तारी जनेऊ तारी कदी जो है सरेआम नहीं कहिंदा कि मेरा जनेऊ बचे है गुरु तेग बहादुर साहब जी की मेहर का सदका बख्शिश का सदका कोई कहिंदा वैरी हो गए। शीशगंज में एक दफा आग भी लाई गई सी अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा जंगो जदल सिखाया वाइस को भी खुदा ने तंग आके मैंने आखिर देरो हरम को छोड़ा वाइस का वाज छोड़ा छोड़े तेरे फसाने। वी पंजी ऐती पैंती साल पहले इकबाल ने एक गल आखी है ते 600 साल पहले कबीर कहिंदा हमरा झगड़ा रहा न को पंडित मूला छाड़े दो भाव ए ब्राह्मण जे इकबाल दे टाइम इतना कठोर से ते कबीर दे वक्त भी इतना कठोर से ते जे कबीर दे वक्त इतना कठोर से ते

प्रथम सिनेमर गुरुदेव जी फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा सत्संग जो एकाग्रता प्रदान करने अज का सोरठ राग के अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का जो महान वाक आया है इस विच ऐसे विषय को सतगुरों ने छोया है जो करीबन करीबन व्यापक है ते जगत की समस्या है। मनुख का कुछ लोड़ा का जगत है, मनुख का कुछ लोभ का जगत है। ये जीवन दे ढंग दो ही ने, लोड़ां दे च जीवना, लोभ दे च जीवना, तीजा जीवन नहीं है। कोई जी रहा है लोड़ां की पूर्ति करने है, कोई जी रहा है लोभ की पूर्ति करने है। अक्सर 99% मनुखां दियां लोड़ां पूरियां हो जांदियां। लोभ किसे दा भी पूरा नहीं होंदा, लोभ दा सुभाव है ते पूरा होंदा ही नहीं, होंदा ही नहीं। लोभी मनुख मरदे दम तक अधूरा ही रहिंदा है, अधूरा ही रहिंदा। जगत दे पूरन शांतमई जीवन उही जीवदे ने जो लोड़ां दे जीवे, लोभ दे नहीं। मैं फिर दोहरावां, लोड़ां पूरियां हो जांदियां ने, लोभ नहीं पूरा होंदा। लोड़ां दी पूर्ति करन दे फिर तीन साधन ने, बड़े ध्यान नाल सुनना। तीन साधन ने। पहला सिरमौर साधन किरत करने, दूजा साधन मंगना मंगता, तीजा साधन खोना लुटना। लोड़ां नूं पूरे करन दे ये तीन साधन ने। किरत करके लोड़ां दी पूर्ति करनी, मंग के लोड़ां दी पूर्ति करनी, खो के लोड़ां दी पूर्ति, और कोई साधन नहीं। जो मेहनत करके लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने किरती। जो मंग के लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने मंगता, जाचक, भिखारी। और जो खो के लुट के लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने चोर, लुटेरे, डकैत। संसार दे च ए तिन्ने मौजूद ने। ए ठीक है, वड्डा तबका किरतियां दा है, पर मंगतियां दा तबका भी घट नहीं है, ते लुटेरियां दा तबका भी घट नहीं। लोड़ां दी पूर्ति करनी है खो के, लोड़ां दी पूर्ति करनी है मंग के, लोड़ां दी पूर्ति करनी है किरत करके, मेहनत करके। ऐसे भी दुनिया विच अवतारां दे राहीं व्यापक नुक्ते लोड़ां दी पूर्ति लई पेश होए, उन्होंने दरम्याना रस्ता चुनिया,
मेहनत नहीं करनी, खोना भी नहीं, भिक्षु बना देते, मंगना है, भिक्षा मंगने, मंगना मंग के लोड़ा की पूर्ति करनी है। आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, वख वख अवतारा ने जिहड़ी उम्मत पैदा की है उन्हां नूं बकायदा नाम दिते ने। जैसे अहले इस्लाम दे बानी मुहम्मद साहब ने अपनी उम्मत नूं मुसलमान कहा, महात्मा बुद्ध ने अपनी उम्मत जो पैदा की थी उन्हों भिक्षु कहा, गुरु नानक देव जी महाराज दे नाल जो उम्मत दा जन्म होया उन्हों सिख आख्या गया। सिख ने, भिक्षु ने, मुसलमान ने, सनातन मत हिंदू धर्म दी शाखा एक नहीं है। ऐसा दरिया है जो कई धाराओं दे बगदा है। जैसे मैं देखा अमरकंटक दे बिलासपुर मध्य भारत हुण ते फैर प्रांत होर हो गया छत्तीसगढ़, उत्थे तीर्थ है अमरकंटक, धन गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहासक स्थान भी है। नर्मदा अमरकंटक तो निकलती है, ते जद निकल दिए उत्थे इस दिया 70 धारावां ने, 70 टुकड़े ने, छोटे छोटे अगो जाके इकट्ठे हो जाते, दरिया की शक्ल अगे चल के बनती है, छोटिया छोटिया धारां। हिंदू धर्म की सनातन मत की धारा एक नहीं है, ये बहुत सारिया धारावां दे च बगदा है और अगे जाके कट्ठा भी नहीं आता। सन्यासी ने, बैरागी ने, ब्रह्मचारी ने, इना देच और सन्यासियां दे कई कई रूप, बैरागियां दे कई कई रूप, ब्रह्मचारियां दियां कई कई शाखां, फिर जितने इष्ट ने उतनिया धारावां ने, किसे दा इष्ट शिव, किसे दा श्री राम, किसे दे श्री कृष्ण। ये धारा मेल भी नहीं खांदी, एक आम मनुख दी ते गल छड़ो, देश ते जगत प्रसिद्ध भगत लेखक विद्वान महात्मा तुलसी, जैसे मथुरा देच आए रामायण दी कथा करन, तो हुण कुदरती गल है मथुरा नगरी श्री कृष्ण दी है, जिवें अयोध्या श्री राम दी, जिवें अमृतसर नूं असी रामदासपुरी कहिंदे आ, रामदासपुर नाम भी पहले यही सी। गुरु रामदास जी दी नगरी है, अयोध्या राम दी नगरी है, बनास शिवा दी नगरी है, मथुरा कृष्ण दी नगरी है। मथुरा विच आए महात्मा तुलसी तो ले गए श्रद्धालु इन्हों कृष्ण जी दे मंदिर विच, द्वारका देश मंदिर विच, सारियां ने डंडौत कीती, तुलसी ने नहीं कीती, तुलसी ने नहीं की थी। पूछा गया, आप भगत हो, सिर्फ भगत ही नहीं, भक्ति का संदेश देंदे हो, उपदेश देंदे हो, कथावाचक हो, सिर्फ कथावाचक ही नहीं, तुसी बहुत बड़े विद्वान हो, लिखारी हो, आपने डंडौत नहीं की थी, मत्था नहीं टेकया, तो हुण जो कुछ तुलसी कहिंदे ने उन्हां दा ही बोल मैं तुहाडे सामने रखा। कैसी सुंदर छब बनी भले बिराजे नाथ, बड़ी सुंदर छबि है, मूर्ति बड़ी सुंदर है, बड़ा सोहना प्रभाव पै रहा है,
ਉਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁਰਲੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਕਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਨੇ। ਕੈਸੀ ਸੁੰਦਰ ਛਬ ਬਣੀ ਭਲੇ ਬਿਰਾਜੇ ਨਾਥ, ਪਰ ਤੁਲਸੀ ਮਸਤਕ ਤੋ ਨਿਵੇਂ ਜੋ ਧਨਸ਼ਬਾਨ ਹੋਏ ਹਾਥ। ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਨਸ਼ਦਾਨ ਹੋ, ਧਨਸ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਧਨਸ਼ਧਾਰੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੁਰਲੀ ਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੁਰਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਿਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਿਕਸ਼ੂ। ਭਿਕਸ਼ੂ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ, ਗੁਰਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਉਮਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਨਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਛੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ ਲਿਖਾਰੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਛੇ ਨੇ। ਨਿਆਏ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੌਤਮ, ਸਾਂਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਪਲ, ਮੀਮਾਸਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਮਨੀ, ਯੋਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਦਾਂਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੜਾਦ, ਇਹ ਛੇ ਗੁਰੂ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਛੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ਼ ਅਨੇਕ, ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ? ਦਰਅਸਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੌਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਿਲਾਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਥਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਪਤੀਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਂਡੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੋ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਲੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਟੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੋਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ, ਭਾਵੇਂ ਛੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਗੌਤਮ, ਕਪਲ,
कणा पतंजलि जैमिनी और ऋषि वेद व्यास इन्हां छे गुरुआं दा गुरु ओ एक है गुर गुर एको इथों दावे नाल गुरु नानक देव जी कहिंदे ने ज्ञान सारा परमात्मा तो आंदा है तो फिर आदि गुरु भी परमात्मा ही है अपरम पर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुरु मिलिया सोई जी। आज तक किसे एक भी ब्रह्म ज्ञानी ने नहीं आख्या ये ज्ञान मैं अपने आप प्राप्त किया है सब केंद्र प्रभु तो मिले है परमात्मा तो मिले है। आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझे हमारा हुण गुरु नानक देव जी महाराज इसे ही वाक दे च मंग करदे ने बाबा जय घर कीरत करते कीरत होए जिस घर दे च कीर्ति चल रही है जिस घर दे च सत्संग चल रहा है हे करते तेरी गल चल रही है तेरियां बातां चल रही ने तेरा ज्ञान चल रहा है तेरी ध्यान साधना चल रही है बाबा जय घर करते कीरत होए सो घर राख वडाई तो है उस घर दे च मैनू रख मैनू ओ थां बख्श जिथे तेरी कीर्ति हो रही है जिथे तेरा जस हो रहा है जिथे तेरी महिमा हो रही है ताकि मैं सुना सो स्थान बताओ मीता जाके हर हर कीर्तन नेता तो मैं अर्ज कर रहा से इको ही उम्मत नो जन्म देता है गुरु नानक ने सिख सिख केवल सिख है इको ही उम्मत नो जन्म देता है मोहम्मद साहब ने मुसलमान केवल मुसलमान इको ही उम्मत नो जन्म देता है महात्मा बुद्ध ने भिक्षु भिक्षु एक तरह की उम्मत सनातन मत दे च नहीं है कोई आर्या समाजी ने कोई देव समाजी ने कोई जो है सनातनी ने फिर इन्हां दी शाख साधुआं दी अलग अलग शाखावां ने अगर असल देखना होवे तो जद इन्हां दी शाइयां निकलदियां ने कुंभ दे च उदों पता चलता है कितने फिरके ने अलग अलग टोल लड़ भी पैंदे झगड़ा भी हो जाता इस कुंभ तो पहले कुंभ दे च 42 साधु मारे गए सन नांगे साधुआं दी ते निरंजनी अखाड़े दी जंग हो गई सी लड़ पए सी एक ने कहा पहले असी स्नान करना है दूजे ने कहा पहले असी करना है कुंभ लड़ पए हैरानगी दी गल कुंभ दे दिन पाप धोण वास्ते आए सन उत्थे ही पाप कर बैठे 42 बंदे कतल हो गए जन्मा जन्मांतरा दे पाप धोण आए सन सब तो वड्डे पाप उत्थे ही कीते सब तो वड्डे गुनाह उत्थे ही कीते एक शाखा नहीं है अनंत धारावां ने ये ओ दरिया है जो अनंत धारावां दे च पहाड़ तो निकलदा फिर मिलदियां भी नहीं आपस अलग अलग ही चलदियां तो मैं अर्ज कर रहा सी मनुख दियां लोड़ां ने और लोड़ां दे नाल संबंध मनुख तोड़ नहीं सकता लख यतन करे मैनू नहीं चाहिदा पानी पर शरीर मंगेगा लोड़ है लख मैं उच्ची आवाज नाल आखां मैनू नहीं चाहिदा भोजन पर शरीर नू भुख लगेगी मंगेगा शरीर नू गर्मी लगती है सर्दी लगती है भुख लगती है प्यास लगती है कुछ ते वड़ियां वड़ियां शरीर दियां लोड़ा ने कुछ छोटियां छोटियां होर बथेरियां इस वास्ते मैं अर्ज करदा हुंना लोड़ा दा कोई त्यागी नहीं है कोई त्यागी नहीं है गल मैनू भुलदी नहीं 15 दिन में कस्तूरबा ग्राम इंदौर देच
संत विनोबा भावे दे होंदिया कथा कीती सी। सवेरे मैं इमली साहब गुरुद्वारे च करदा सी, शामी कस्तूरबा ग्राम जो संत विनोबा भावे जी का आश्रम सी, मैनू कहण लगे सानू भी गुरबाणी सुनाओ। मैं कि जरूर सुनावा। मैनू उन्होंने 35-40 किताबां भी अपनिया लिखिया हुई भेटा च दित्तियां। सुभाविक बजुर्ग सन, धन माया मेरे अगों आई तो चूंकि त्यागी साधुआं दा आश्रम सी, परोपकारियां दा सेवा भाव, जमीन कट्ठी करके ते गरीबां दे च वंडनी भूदान, तो ओ माया मैं विनोबा भावे दे झोले च पा दिते, एकदम सुट दिती मिट्टी। मैं कह इस तरह क्यों इन्ने नफर मिट्टी आई है? मैं कह मिट्टी नू हथ लांदे हो कि नहीं? मिट्टी नाल ते तुहानू हथ भी धोने पैंदे ने, मैं देखदा। मिट्टी नू हथ लांदे हो कि नहीं? ते जे धन भी मिट्टी है तो की हर्ज है? की हर्ज है? मैनू कहण लगे मनुखता ने मिट्टी नू अजे इतनी अहमियत नहीं दिती, मिट्टी तो बने हुए कागज नो, इस करंसी नो बड़ी अहमियत दे देती है। इहदे च अहमियत छुपी हुई है बड़ी, एक किधरे लोभ ना पैदा कर देवे, इस वास्ते सुनते। मैनू अजे तक याद है। पर लोड़ां दा मनुख त्याग नहीं कर सकता, लोड़ां हैं। मैं लख कह दिया नहीं चाहिदा मैनू पानी, मेरी प्यास आवाज मारेगी पानी चाहिदा चाहिदा। मैं लख ठोकर मार देवा भोजन दे थाल नो, मेरी भुख उच्ची आवाज नाल मंगेगी भोजन चाहिदा भोजन चाहिदा। और इस तरीके दिया होर सैकड़े लोड़ा। फिर लोड़ा नू पूरा करन दे तीन साधन ने। पहला किरत करनी, मेहनत करनी। मेहनत करके अपनी लोड़ां दी पूर्ति करनी, ते जो मेहनत करके लोड़ां दी पूर्ति करदा उन्हों कहिंदे ने किरत। दूसरा मंग के लोड़ां दी पूर्ति करनी। क्योंकि अज दा वाक इस तरह दा आया तो मैं अर्ज करा अछूता जिहा वाक है, किस हो जाची किस साल आई, जाचण मंगण तो गल चलती। अज का हुक्मनामा इस तरह का, इसने ही ख्याल दिते ने मैनू, अज का वाक ही ऐसा है। लोड़ां दी पूर्ति करन दा पहला ढंग है किरत करनी, मेहनत करनी, उन्हां नू कहा जांदा है किरती। दूजा ढंग बड़ा व्यापक पद्धर ते सारी दुनिया दे चे, मंग के लोड़ां दी पूर्ति करने। तो इस नाल मंगतियां दा जन्म होया, भिखारियां दा जन्म होया, और धार्मिक जगत दे च भी मंग के लोड़ां दी पूर्ति करनी है तो महात्मा बुद्ध ने अपनी उम्मत नू कहा भिक्षो भिक्षो, भिक्षा मंग के गुजारा कर। इस वास्ते मैं कई दफा कहा कि महात्मा बुद्ध ते स्वामी महावीर दा धर्म ते इस तरह दे होर त्यागियां दा धर्म व्यक्तिगत धर्म है, है प्रभु नाल जुड़न दा वसीला है। ये व्यक्तिगत धर्म है, समूहक नहीं, सारियां दा नहीं। कारण अगर सारे भिक्षु बन जान, चलो मन लेंदे हां सारे महात्मा बुद्ध की गल मन लैन ते सारे भिक्षु बन जान, फिर कौन देगा? देने वाला कौन होगा? किसने देना? सारे ते मंगते हैं, सारे ते मंगण वाले, फिर कौन देगा? तो सारियां दा धर्म नहीं है। अगर सारे ग्रस्त दे त्यागी बन जान तो 300 साल तो बाद बंदा ते जमीन ते एक भी नहीं लभेगा, गल खत्म हो जाएगा।
ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਥ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧਰਮ ਅਜ਼ੀਮ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਮੂਹਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਵੀਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਮੂਹਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਥ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਜੀਣਗੇ। ਗਊਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਤਿਆਗੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਗ੍ਰਸਥ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਰਮ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਸਮੂਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗ ਕੇ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਚਲਾਉਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਰਮ ਹੈ, ਹੈ ਧਰਮ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਜੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਮੰਗਣ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਠੇ ਹਾਂ, ਖੱਪਰ ਲਿਆ, ਬੂਹੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹੈ। ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤੀ, ਜੋ ਮੰਗ ਕੇ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਿਕਸ਼ੂ, ਭਿਖਾਰੀ, ਮੰਗਦੇ, ਔਰ ਜੋ ਖੋ ਕੇ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੋਰ, ਲੁਟੇਰੇ, ਡਕੈਤ। ਇਹ 3 ਸਾਧਨ ਨੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਖੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ? ਖੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਾਕਾ ਡਾਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਗ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਹਨਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾ ਗਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੀ। ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਵ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖ ਵੁੰਝ, ਧਿਆਵਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਦੂਜਾ ਟੋਲਾ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੋਰਖ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜੋਗੀ, ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਭਿਕਸ਼ੂ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਜੈਨੀ ਸਾਧੂ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਖੋਟ, ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ, ਮੰਗਣਾ ਬਹੁਤ। 10% ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਦੇ 'ਚ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, 20% ਵੀ ਨਹੀਂ, 100% ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੰਗਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ

भिक्षा मंगलई जिंदगी है, भिखारी मंगते गदागर इनमी श्रेणी में। फिर लुटेरा तबका, चोर तबका, डकैत तबका है ही नहीं, वहीं तबके होते है ही नहीं वहां तबका। लोड़ा की पूर्ति ए तीन ढंग नाल होंदी है, तीन ढंग नाल। गुरु नानक ने सानू किरती बनाया, किरत कर उदम करें दिया जीव तो। फिर ऐसा भी कहते ने, मंगण गया सो मर रहा, मंगण मोल ना जाए, मांगत मान ना पाया, ना मांग भिखारी ना बन, भिक्षु ना बन। इस तरह की उम्मत नू मैं नहीं जन्म देना। किरत कर, मेहनत कर, दिमागी मेहनत कर, शरीरक मेहनत कर, कुछ भी कर। हैरानगी दी गल, सारी जिंदगी गुरु नानक ने भरमण दे च लंघाई, उपदेश ते संदेश दे च लंघाई। बिरध अवस्था दे च आखरी समय करतारपुर दे च हल पे चलांदे ने, बीज पे बीजदे ने, खेती पे करदे ने। जगत दिता, जगत नू दस दिता, मैं किरत नहीं छोड़ी, मैं कम नहीं छोड़े, मैं धंधा नहीं छोड़े, ये तो मैं करने। आखिरी दम तक कबीर कपड़ा बुन दे रहे, बुन दे रहे। जब चेलिया ने ही कह दिता कबीर नो हुण ते छड़ो, थोड़ी प्रसिद्धि बड़ी हो गई है, चारों पासे लोकी थानू भगत भगत करके पूजदे ने, सन्मान देंदे ने, हुण ते छड़ो। कहन लगे नहीं, हुण ते मेरी किरत भी कीर्ति बन गई है। हुण जद मैं खड्डी चलाना ते खड्डी दी धुन पैदा होंदी है मेरे मन दे चों, प्रभु दी धुन पैदा। हुण ते कपड़े बुनना सेवा बन गए, मनुखता दी सेवा बन गए, हुण क्यों छोड़ा। पहले मैं सिर्फ लोड़ां दी पूर्ति वास्ते कपड़ा बुनदा सी, हुण ते कपड़ा बुनना सेवा बन गए, हुण क्यों छोड़ा। आखिरी समय तक कपड़ा बुन दे रहे, नामदेव कपड़िया नू छिम दे रहे। मैं फिर अर्ज करा, मनुख लोड़ां दा त्यागी नहीं हो सकता, लेकिन मनुख लोड़ां दे च नहीं जीवदा, लोभ दे च जीवदा, लोभ दे च। ते लोभ मनुख दे मानसिक सथल नू इतना गिरा देंदी है, प्रभु नाल जुड़ना, प्रभु चिंतन करना, सत्संग दे च बैठना औखा हो जाएगा, कथा कीर्तन सुननी औखी हो जाएगा। यह लोभ नहीं करन देगा। महाराज कहने लोभ ते पागल कुत्ता बना देंदा है मनुख नू, ज्यों कूकर हर काया, लोभ तावे दै दिस जाए, लोभी जंत न जाने पख अवक सब खाए। लोभ ते पागल कुत्ता बना देंदा है मनुख नू, किसे नू भी नहीं छड़ेगा। पागल कुत्ता जिन्हें पाले है उन्हों भी वड़ेगा, उन्हों भी खाएगा। इस वास्ते तमाम संत जना ने, अवतारियां ने लोभ दे त्याग दाके। लोड़ा दी सीमा है, लोभ दी कोई सीमा नहीं, लोड़ दी ते सीमा है। इहदे उत्ते इक मैं उदाहरण देंदा, उन्हां दे के फिर अकरी अर्थ करिए। जैसे भुख दी ते सीमा है, दो रोटियां मैं नहीं खावांगा तो चार खा लेंगा, चलो चार नहीं तो अठ खा लवांगा, सीमा तो है ना, भुख दी सीमा है, स्वाद दी सीमा नहीं है। हुण बंदा सारा दिन खांदा रहेगा, घंटे घंटे च खांदा रहेगा, और अद्धे घंटे च खांदा रहेगा, स्वाद दी सीमा नहीं है, भुख दी सीमा है। लोड़ां दी सीमा है, लोभ दी सीमा नहीं है। लोड़ां मनुख नू नहीं गिरांदियां, लोभ गिरा देंदा। लोड़ां मनुख नू नहीं भटकांदियां, लोभ भटका देंदा। लोभ पागल कुत्ता बना के रख देंदा। इस लोभ दी पूर्ति भी मनुख तीन तरीकियां नाल करदा है, मेहनत करके।

एकत्र करी है माया, दान पुण्य नहीं संतन सेवा, एक ही काज ना आया, कार्य भरण सवारी सिज्जा

कब्रिस्तान दे शायद इतनिया कबरां ना होवन जिन्हियां चलदियां फिरदियां कबरां दिखाई दे। कुछ भी नहीं है जीवन दे, कुछ भी नहीं है। जरा फोल के वेख लेना, सिवाय मुरदमी तो होर कुछ भी नहीं निकलेगा, सिवाय रोने पिटण तो होर कुछ भी नहीं निकले। खोल के देख लेना। मैं अक्सर अर्ज करता हूं ना, हर मनुख ने पता न कितना रोना छुपाया होया, कितना दुख छुपाया होया, कि हस दे मुस्कुरांदे चेहरे पता नहीं कितना रोना छुपाई बैठे, कि चमक दे ते चुपड़े मथे कितना कलेश छुपाई बैठे ने, कि घरां दी खामोशी पता नहीं कितने भांबणां नूं छुपाई बैठी है। बस ये चलदियां फिरदियां लाशां, ये कबरां, ये शमशान घाट, महाराज इस तरह कहंदे ने, भावें कितना शिंगारे है, कितना साजो समान है, कितनी धन संपदा है, महाराज कहंदे ने ध्यान नाल इसनों विचारना है, मुर्दा शिंगारे है, मुर्दा शिंगारे है, जिंदा नहीं है। जिंदा ते तां हो सकदा सी, सो जीविया जिस मन वसया सोए, नानक अवर ना जीवे कोई, नहीं जीवदा। बाकियां दे मन ते मरे हुए ने, इस मरे हुए मन नूं इस तरह लेना, क्योंकि तार्किक तर्क कर सकदा है, तन दे तल ते जो मर गया है जिंदा नहीं हो सकदा, नहीं हो सकदा। चलो मैं थानू घटना भी सुनावां। सिंगापुर दे च घटना घटी, एक चंगे धनाड का नौजवान लड़का चलाना कर गया सिंह। ये घटना बड़ी मशहूर, इथों ही अमृतसर के निकटों संत गए हुए सन, अपने आप नूं संत कहिंदे सन, लोकी मनदे ने, इस तरह के संतां नूं ही संत आखिया जांदा है, मनिया जांदा है। गुरु गोबिंद सिंह का बाणा ते उतार के उन्होंने बाणा अपना दिता होया। उन्होंने कहा इसनों घर दे च रखो, शीशे दे बक्से च, अगले साल मैं आवांगा इसनों जिंदा करांगा। मलेशिया सिंगापुर दे च ये घटना बड़ी मशहूर हुई, जिंदा करांगा। बदकिस्मती समझ लो, मैं उन्हां दे नज किधरे उत्थे ही सी, ते उसे ही गुरुद्वारे कथा कर रहा सी जिथे वो आए। मैं कह बैठा, मैं कह साल बाद एदियां हड्डियां भी नहीं लगनियां, आखदा पिया संत आखे पिया, तो तनाव खड़ा हो गया, मेरे नाल झगड़ा शुरू हो गया। कहन लगे साल उड़ीके बिना तुसी किस तरह कह सकदे हो। मैं कह सकदा रब्बी नहीं है, ईश्वरी नहीं है, मैं प्राण निकल चुके ने, डॉक्टरों ने कह दिता है मुर्दा है, नहीं जिंदा होएगा, नहीं होएगा। साल बाद वो कहने जिंदा करांगा, मैं कि साल बाद शायद इसका मांस भी ना लवे, हड्डियां भी ना लवे। ये तनाव काफी वधिया, मैनू बड़ा बुरा वाला आख्या। वो जिन्हों का लड़का गुजरिया सी कहने थानू पता नहीं है संत शराप दे देंगे, ते मैं कहा फिर समझ लेना, मैनू सराप लग जाए तो फिर सच समझ लेना, ते जे ना लगे तो फिर मेरी गल नू सच समझना। उन्होंने शीशे दे बक्से दे जद घर दे च रखण दा यतन कीता, ते पुलिस घर पहुंच गई, मुर्दा घर दे च नहीं रख सकदे, सिंगापुर दे कानून दे मुताबिक कब्रिस्तान दे दफन करना पए। तो हुण मुसलमानां दा कब्रिस्तान उन्होंने इनकार कर दिता है, सिख ऐसे नहीं दफनाउण देना। ईसाइयां दा कब्रिस्तान उन्होंने भी इनकार कर दिता, इत्थे सिर्फ ईसाई दफन हो सकदे ने। बोधियां दे कब्रिस्तान विच दफन कीता, ते संतां ने कहा साल बाद जिंदा करांगे, साल तो पहले पहले संत आप चलाना कर गए। उन्होंने भी शीशे दे बक्से च रख के सवार के रखना पिया, क्योंकि उन्होंने भी इस तरह की वसीयत की हुई सी, शायद सोचते होंगे दो चार साल बाद मैं जिंदा हो जावांगा।

तेरी उपमा तोहे बन आवे। धन गुरु अमरदास जी महाराज ऐसी वृद्ध मूर्ति हन जिन्हां दे जीवन दी छाप जगत नू ए उपदेश देंदी है कि उम्र दे किसे भी हिस्से विच मनुख नू निराश नहीं होना चाहिदा, चाहे शरीर बुढ़ा भी हो गया है, बिरध भी हो गया है, पर मनुख दे अंदर अगर उत्साह है, उमंग है, आशा है, तो बहुत वड्डे वड्डे कम उस अवस्था विच भी हो सकते ने जदकि अक्सर बुढ़े पिछलोकी निराशा दे खड़ विच जा गिरदे ने। धन गुरु अमरदास जी महाराज का जन्म पिंड बासरके जिला अमृतसर माता लक्ष्मी जी दी कुखों पिता तेजभान दे घर विच होया। आप जी का जन्म विसाख सुदी 14-1526 विच होया। आप जी दी संतान मोहरी जी, मोहन जी ते दो पुत्रियां दानी जी, भानी जी, ए आप जी दा ग्रस्ती जीवन सी। बच्चियां देच, परिवार देच, घर ग्रस्ती देच आप जीवन इस ढंग दा बरतीत कर रहे सन जैसे के पानी देच रहिंदा होया कमल। लेकिन फिर भी एक धू अंदर बनी रहिंदी सी कि परम आनंद वो जो समाधि है वो नसीब होए। कहिंदे ने आपने इसी इच्छा नु मुख रख के थां थां ते तीर्थां दा भी रटन कीता और अक्सर गाहे बगाहे हरिद्वार भी जांदे सन। एक दिन गंगा दे इशनान करके ठंड दे दिन सन रेत दे बैठे चरणां नु पसार के पैर पसार के एक पांदा जो इल्मे निजूम दे माहिर सी ज्योतिषी सी लंघिया। उदी निगाह पसरे हुए चरणां ते पै गई और उसने मत्था टेकया। धन गुरु अमरदास जी महाराज ने रोकया, आखिया ब्राह्मण देवता मैं ते खत्री हां, तू ब्राह्मण है, कुल करके जात करके तो उच्चा है, मैनू क्यों मत्था टेके है? तो ब्राह्मण हथ जोड़ के कहन लगा, महाराज थोड़े चरणां विच पदम है, ये पदम ते किसे ब्रह्म ज्ञानी दे चरणां विच होंदा है, ये पदम ते किसे पहुंची हुई रूह दे चरणां विच होंदा है, थोड़े कदमां विच पदम। तां गुरु अमरदास जी महाराज बड़ी रूहानी मुस्कुराहट विच कहन लगे, ब्राह्मण देवता मैं ते एक यात्री हां, बिल्कुल यात्री। वो ब्राह्मण कहन लगा, महाराज ये बीज अजे अंकुरित नहीं होएगा, होया ये होण वाला है, और जदों ये बीज अंकुरित होवे मैनू भुलना नहीं, मैं थोड़े चरणा च आवांगा, मैं थोड़े दर्शन करन लई फिर आवांगा। रब दी नेत गुरु अंगद देव जी महाराज दी पुत्री बीबी अमरो आप दे भतीजे नू व्याई गई। इस तरीके नाल गुरु अंगद देव जी महाराज दी बच्ची आप जी दी नू बनी। एक दिन बीबी